0: तुम क्लास तुम कफाफी।
1: सूतु सूतसाने ने रजकले मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्ते तम से दिखूं तुम कला रे नाना का तीन नाना का काम रे तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन के जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम ये जन के रिस के जान पा ना जब फिक्री जानू उतन मान लेकिन फिर से देसाना को दे मनारा का नास वो सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मनारा का नंबर दे ए देमरा रे ना तब फिर तो हम तांग मिरी जाने सेंस आप दे दे
2: क्या ना काफी ना सु पफतारा कौन सा ये ले फिर ना काफी ना जाने मासूत सा उन अच्छा सा ले तीन रुपये तक के ना बुला चुना ये ना जाने
3: ए सूट सान ले वचने मुझे ते माता कास्कियार सुनना लगा को ले सूट तुम आते थी ए सेना वातार पे सूट जिस चीज में आपने चांस सूट सान से ले सूट क्या ना काफी ना टीम याना कर सारे तुम आते थी वाला सा सीज़न सोचो ची मुलाला सा चेक नहीं सेंच साझा मापा ये रेना जब यान जमाना नहीं मापता ना जरा के से ते तांज ना तुम तुम्हारा ने
4: क्या ना ले ले उल्ला ना दे तुम्हारा avany a Diego nakany tsireara dia verina ny Diego araka ny faniriny hoe te hiteta Madagasikara dia zotony mihitsy izany efa ankehirezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.